0: तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको इस तरह के साइन मिलने शुरू हो जाएं जो ये इंडिकेट करें कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त इन सब चीजों को जो भी आप दवाई के तौर पे खा रहे हो, जो भी आप खुराक के तौर पे खा रहे हो, उसको एक बार सेपरेट अलग कर दें। और खुराक की जरूरत तो है, लेकिन दो क्या, वो जो प्रिपेयर्ड मील है, जैसे मैंने आपको सी कूटन की बात की है, जैसे अजवाइन की बात की है, जैसे विटामिन सी की बात की है, इस तरह की चीजें जिनकी हमें रोजाना डे टू डे ज्यादा जरूरत है। विटामिन सी और बी के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं ये जल्दी, अब घी फैट है ना, इस तरह के जो हैं वो जल्दी खारिज नहीं होते शरीर से, लेकिन वाटर सॉल्युबल हैं वो जल्दी खारिज होते हैं, जल्दी वेस्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाए, चाहे बुखार की वजह से चाहे किसी की वजह से, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ ही की बिना, आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट बढ़ गई है बॉडी की, तो उससे पसीना आना शुरू हो जाता है, साल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त विटामिन भी आपके खारिज होते हैं। तो सबसे ज्यादा विटामिन जो खारिज होता है वो है विटामिन सी और विटामिन बी। इसीलिए डॉक्टर लोग हरेक बुखार में ये रिकमेंड ही करते हैं कि भाई इसको विटामिन सी और बी वगैरह रेगुलरली देना शुरू करो। और देसी चीजों में हमारे पास नींबू है, हमारे पास ये जो ऑरेंज है, इस तरह की चीजें हैं। और वीकनेस के तौर पर मैंने आपको हजवाने के बारे में कहा था कि हम साधारण बात समझते हैं, लेकिन हजवाना जो है, वाटरमेलन जो है, इसमें एल सिट्रोलाइन नाम का तत्व जो है वो बहुत एनर्जी देने वाला है और बहुत सी चीजें हमारी कवर करता है, थोड़ी क्वांटिटी में भी वो बहुत ज्यादा काम कर देता है। तो फिर आपको ये करना है। चलो खैर, ये वो था जो आज से पहले मैंने सभी प्रोग्रामों में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सभी में आपको दोहरा दिया था, ताकि आपको याद रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल गया तो बोल गया, नहीं, जैसे मुझे याद है ना वैसे आप लोगों को भी याद हो जाए कि क्या क्या चीज हुई थी, उसका क्या क्या पर्पज था, और अगर ऐसा पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे क्या करना। उसके बाद और जो ऑर्गेनल्स हैं, और जो अंग हैं हमारे इस सेल के अंदर, उसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इस तरह की कुछ और अंग हैं और चीजें हैं जो सेल के अंदर अंदर घूम रही हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, वो सेल के नजदीक, जैसे क्रॉसिंग नहीं होता, या क्रिश्चियन लोग गले में पहनते हैं ना क्रॉस, ये जो क्रॉस की तरह के इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं, और इनके ऊपर इसकी निशानी क्या है कि जैसे कांच की दो ट्यूबें हों और उनका क्रॉस बना दिया जी, कांच की ट्यूब में इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, इस ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइट है ना, ये इसके ट्रांसपेरेंट जा रही होती है, और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो आसान समझने के लिए मैंने ये कह दिया कि जो क्रिश्चियन लोग हमारे वो क्रॉस पहनते हैं ना, क्रॉस की तरह अगर दो ट्यूबें आपस में जुड़ी हो, उसका क्रॉस बना हुआ हो, तो इस तरह के ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, और इन सेंट्रोसोम्स के ऊपर एक और बहुत बड़ी, और हमेशा हमेशा ये एक जोड़े में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेंट्रोसोम यहां हो गया, एक फिर कहीं और हो गया, एक फिर कहीं हो गया, नहीं, जहां जहां भी होंगे ये जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे, ये इसकी पक्की निशानी है। और इसके ऊपर इसकी निशानी क्या है, बाकी इस तरह के और बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, इनके ऊपर भी और सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इसी तरह रॉड के ही होते हैं, लेकिन इनका फर्क क्या है, सेंट्रोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे आप नाक है ना आपका, मैं बड़ी आसान एग्जाम्पल आपको दूं, आपका नाक है, नाक बैरल है ना, एक ट्यूब है ना, दो ट्यूबें पैरेलल जा रही हैं, और आगे अपनी आंखों का क्रॉस हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक इसी तरह की कंडीशन सेल के अंदर होती है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और आप ये देखते हैं कि नाक के अंदर बाल होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं, ये जो सीलिया हैं, ये जो सेंट्रोसोम है, इसके ऊपर ये सीलियाज होते हैं, ये इसकी पहचान है। सीलियाज का काम क्या है, जैसे कोई नाव चलती है ना तो चप्पू चलाते हैं ना, पानी को इधर से उधर से इधर से उधर से मारते हैं, इनका काम है इन सेंट्रोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, ये बेड़ी एक नाव की तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है जैसे जैसे भी होना है वो नॉर्मल काम इसका हो। इसको हम एक तो इसका दूसरा नाम है फ्लाजेला सीलिया, जैसे मछली मछली की पूंछ होती है ना उसको फ्लाजेला बोलते हैं, उसके ऊपर एक झालर सी होती है, ठीक इसी तरह की इसकी आमतौर पर जो कंडीशन होती है इसको हम सीलिया या फ्लाजेला हम बोलते हैं। और ये इन सेंट्रोसोम्स की ट्यूब्स को मूव करने में मदद करते हैं कि यहाँ काम हो गया मिस्त्री जी, अब तुम वहां जाओ, अब वहां काम हो गया। इस तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर घूमते रहते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि जब सेल की डिवीजन होनी हो तो हरेक चीज नॉर्मल, ताकि जितने भी ये सेंट्रोसोम्स हैं उनकी डिवीजन बराबर बराबर हो सके, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं अंदर अंग हैं वो बराबर बराबर, ऐसा ना एक बाप के बच्चे अब बाप की जायदाद को डिवीजन कर रहे हैं तो कि ये एक भैंस तेरी, ये एक भैंस मेरी, ये एक गाय मेरी, एक गाय मेरी, ऐसा ना हो कि गाय किसी एक ही तरफ की चल जाए, भैंस एक ही तरफ चल जाए, ऐसा ना हो। इस चीज को जो यकीनी बनाते हैं ये बराबर के बराबर वंड करते हैं, जैसे एक लाइन ही खींचता कोई आदमी, और ये लाइट वाले हैं, ट्यूब है, ट्यूब क्रॉसिंग वाली है और डबल लेयर्ड होते हैं, ये आपस में बांट जाते हैं कि भाई ठीक है, जब यूएनओ की फोर्स नहीं होती, कहीं लड़ाई हो जाए तो यूएनओ की फोर्स जाती है और बोलते ठीक है भाई अब सीज फायर हो गया है, तुम अपनी जगह रहो तो हम अपनी जगह रहो, हम सेंटर में हैं। ठीक इसी तरह ये इसका नाम ही सेंट्रोसोम रख दिया, सेंट्रलाइज पोजीशन इनकी होती है, हर एक चीज को बराबर बराबर बांटने के लिए इनका असल काम होता है इक्वल सेल डिवीजन। और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है। और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है तो उसमें ज्यादातर की होगा, हमारे पास है ना बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरी तो जी किडनी ही एक है, बड़ी ये बात लगती है ना, जब कुदरत ने शुरू से लेकर दो किडनियां बनाई हैं तो फिर तेरे में एक कैसे होगी। या कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि एक कान है दूसरा कान बाहर बना ही नहीं है, या एक कान बना है ऊंचा है एक कान नजदीक नीचे है लेवल से नीचे है, इस तरह बहुत सी विकृति, इनको हम लोग होते हैं विकृति या दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एनोमलीज, इस तरह की बहुत सी एनोमलीज है जो आप आम आदमी सोचता ही नहीं है कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा कि भाई इसकी तो किडनी ही एक है, दो हैं उसे काम चलता था, उसने कुदरत ने एक ही बनाई है, उसको कुदरत ने नहीं बनाई, ये जो सेंट्रोसोम मैं आपको बोल रहा हूं इसने डिवीजन करनी थी, इसने नॉर्मल नहीं की, या एक तरफ का झुकाव हो गया, सभी जो दूध देने वाली गाय भैंसे थी वो एक को दे दी, दूसरे तरफ उसको तो दिया नहीं, तरफ भूखा मर रहा है ही कुछ नहीं उसमें। तो इस तरह की जो कंडीशन है, और या ये काम ऐसा तो नहीं होगा अकेली किडनी में होगा, क्योंकि पूरे सेल के वजूद की बात हो रही है, पूरी बॉडी के वजूद की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ब्रेन भी डिफेक्टिव रह जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का शरीर तो बहुत बड़ा है, सिर बहुत छोटा है, किसी का आपने देखा होगा कि शरीर छोटा है सिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही, हालांकि जो सिर बड़ा होने के और भी बहुत से कारण है, जैसे हाइड्रोसेफलस वगैरह की मैंने बात बताई थी और बहुत सी बीमारियों के बारे में मैंने पीछे प्रोग्राम दिए थे, लेकिन हाँ जब भी इस तरह की किसी अंग में डिवीजन का आप फर्क समझते हो, डिवीजन नॉर्मल नहीं हुई, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि इसका सेंट्रोसोम ने काम पूरा नहीं किया, जितने भी अंदर सेंट्रोसोम थे, जितनी भी यूएनओ की फोर्सेस थी, उसने सीज फायर करवा दिया था, लेकिन उसने जो सीज फायर गलत हो गया, एक तरफ तो बेचारी ज्यादा डेथ होगी, दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह अंगों का छोटा बड़ा होना, या किसी अंग का एब्सेंस हो जाना, होना ही ना, जैसे किडनी की बात मैंने की है, या किसी का टेस्टिस ही एक होना। ये तो टेस्टिस की बात तो मैंने याद आ गई तो मैं बोल रहा हूँ। कई बार कोई ऐसा होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सातवें आठवें महीने प्रेगनेंसी के दौरान हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो वो अंदर रह गया। पर लेकिन हमको पता तो चलता है ना कि भाई नहीं, वो आना था, ये एंग्वाइनल कैनाल से नहीं पास हुआ, एक तरफ रुक गया, एक तरफ का बाहर आ गया। ये तकरार में बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसका टेस्टिस है ही एक, इसका टेस्टिस है ही एक, या किसी लड़की में पैदाइशी तौर पे ओवरी है ही एक, आजकल तो वैसे हालात के तौर पे अगर ओवरी एक निकाल देते हैं तो बच्चे फिर भी पैदा होते हैं, टेस्टिस एक एक होता है तो तभी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो काम क्रिया होती है, ठीक है, कि जो दो महीने में होनी थी, एक काम ने करना था, सॉरी एक महीने में करना था, वो दो महीने में हो रहा है, फर्क कोई इतना ही पड़ेगा उसमें, लेकिन काम हो रहा है। और ये सब इस तरह की जो डिवीजन होती है ओवरी में, टेस्टिस में, किडनी में, या और जितने भी अंग हैं, अगर वो एक ही अंग है तो वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल का जब मैं नॉर्मल का लफ्ज बोलता हूं ना, तो उसका मेरा कहने से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी आपस में एक रेशो है कि ये इतना होगा तो ये इतना होगा, ये इतना होगा तो ये इतना होगा। हमारी उंगली इतनी लंबी होगी तो हमारा फ्लेंजेस इतना होगा, हमारा रिस्ट इतनी होगी तो यहां से लेकर एल्बो तक ये इतना होगा। ये एक मेजरमेंट, अभी तो मेडिकल साइंस ने इशारा का, हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं, सारा कुछ कर दिया है कि भाई इतना इतना होगा। लेकिन जब ये चीज, ये रेशो एल्टर कर जाए कि नहीं भाई, एक मां तो छोटी है, एक बड़ी है, एक ऐसे ही लगता है कि जैसे अपने शोल्डर के साथ जुड़ी हुई हो, छोटी सी बांध रह जाती है, ऐसे तो मैंने देखे हैं कई लोग कि ऐसे हो जाते हैं, इस तरह एक टांग ही छोटी हुई है, एक टांग पूरी बड़ी हुई है, इस तरह की जो डिवीजन या इस तरह का जो भी कुछ हो जाता है, ये सेंट्रोसोम की वजह से होता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुरानी बीमारियों में कैंसर टाइप की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, कान छोटा, बांह छोटी, ये सब चीजें आमतौर पर होनी शुरू हो जाती है, ट्यूमर वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो किडनी है, दूसरी तरफ ट्यूमर है, किडनी डेवलप ही नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे कारण, जितने भी हम लोग अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, कभी यह समा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि पेट के अंदर क्या हो रहा है। अब तो हम एक एक बात जो है पेट की जानते हैं, और उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे पहले पता कर देते कि कैसे। और यही चीजें हम लोग पहले, जरूरत बीमार होने से पहले, जरूरत पड़ने का मतलब बीमार होने से पहले, आजकल हम लोग जान लेते हैं कि इसके शरीर में किस किस चीज की कमी। जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात मैंने आपसे कही है, और अगर टेस्टिस हो ही ना, एक पैदा हुआ वो तो टेस्टिस में आ गया, दूसरा बने ही नहीं, तो इस तरह की बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं, जिनका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोसोम है इस बॉडी में, इस सेल में, वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरी की पूरी डिवीजन नॉर्मल आगे नहीं बना रहा। तो उसके बाद इसी के साथ मिलता जुलता एक सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको बताऊं, है तो वही इसी का हिस्सा, सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें, डिवीजन करने वाली चीजें हैं, लेकिन और ब्रीक डिवीजन करनी। आपने कभी लड़कियों को वो चादरें निकालती थी ना, फूल बूटे बनाती थी या दरियां बुनती थी, वो अब देखा होगा आपने, बहुत से सुनने वाले लोगों ने ऐसा पुराने जमाने, अब तो करती नहीं है लड़की, अब तो पढ़ाई से उसको खुशरत ही नहीं होती, पहले जमाने में तो दाज में जो लेकर जाना है उसने जो जितनी चादरें बनाई है, जितने सिरहाने बनाए हैं, उनके फूल बूटे निकाले हैं, यही सब दाज में उसको लेकर जाना होता था, यही सब करता था कि ये लड़की कितनी मेहनती है और आगे जाकर घर को कैसे बनाएगी, इसी से ये सब जाना जाता था। लेकिन एक सेल में ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक तो सेंट्रोसोम की बात मैंने बता दी कि जैसे क्रॉस है इस तरह का, लेकिन बना हुआ पाइपों का, जैसे कच कांच की पाइप होती है, ट्रांसपेरेंट पाइप हैगी है, डबल गुलाई वाली हैगी है, और उसी तरह की इस क्रॉस टाइप का ये सेंट्रोसोम्स होता है, इसके साथ मिलता जुलता और ब्रीक डिवीजन करने के लिए, और ब्रीक डिवीजन करने के लिए आपने देखा होगा कि लड़कियां जब सिलाई करती हैं ना, मैंने बड़ी बारीकी से चीजों को ढूंढा, क्योंकि जब मैं बताता था ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मुझे ये चीजें, इसीलिए मेरे स्टूडेंट मेरे से इस बात के लिए खुश थे कि इसका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, ये भूलता नहीं है, हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे। तब मैं जैसे सेंट्रीओल्स की बात कर रहा हूं तो ये इस तरह के हैं बारीक कि जैसे लड़कियां सुई से वो धागे गिनती है ना, इतने धागे निकाल कर, या स्वेटर बुनती हैं तो स्वेटर की गिनती के इतने कुरे निकालने हैं, इतने कुरे के बाद ये डालना है, इतने कुरे के बाद ये करना है, उसी तरह ही ये जो सेंट्रीओल्स है ना, ये डिवीजन को और एक्यूरेट बनाता है, डिवीजन को और एक्यूरेट बताता है। एक तरह का स्टोर हाउस इसके पास है कि भी मैं बांटूंगा, मैं चीजें बांटूंगा, भाई जब डिवीजन हो रही है सेल की होनी ही है तो मैं इन चीज को बराबर बांटूंगा, तो इतनी बारीकी से बांटूंगा कि भाई जितने इसके तंग हैं या इसके रेशे हैं ये इतने इधर चले गए, इतने इधर चले गए। वही एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी कि लड़कियां जब सिलाई कढ़ाई करती हैं या दरियां बुनती हैं तो फिर वो रेशों की गिनती करती हैं, वो धागों की गिनती करती हैं, और धागों की गिनती करके फिर उसको वहां से निकालती है ताकि इतने बराबर इधर रह जाए, इतने बराबर इधर रह जाए, तो लगेगा कि जो फूल मेरा बन रहा है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज बनेगा, जहां मैं चाहती हूं वही बनेगा। तो इसलिए सेल के अंदर डिवीजन, जो हर हालत में 120 दिन के बाद सेल को मरना है, नए सेल को आना है, या एक सेल से अगर नए सेल की डिवीजन हो रही है तो उसमें जो भी उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बराबर आने चाहिए। और अगर वो बराबर आएंगे, कैसे आएंगे, एक तो पहले हम सेंट्रोसोम बोल दिया कि भाई हम रास्ते में यूएनओ की फोर्स हैं, हम खड़े हो गए हैं, इधर आपकी फौज है, उधर आपकी फौज है, हम खड़े हैं, अब सीज फायर हो गया है, लेकिन गिनती तो नहीं ना हुई, अभी इंसाफ तो होना बाकी है ना, अभी कैसे होगा ना। तो वो है हमारा सेंट्रीओल्स, वो गिनती है सिलाई की जो मैंने आप सब लोगों को बताई कि बिल्कुल ब्रीक रेशे है, जैसे कपड़े के रेशे होते हैं ना, ताना पेटा जो को हम बोलते हैं, इसी तरह की वो डिवीजन करने वाले ये सेंट्रीओल्स होते हैं, और काम इसका भी वही हो गया। और ये लोग जो हैं, इनके साथ साथ एक और चीज चलती है, वैक्यूल्स उसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी खाली स्टोर डब्बे नहीं होते हैं कि ठीक है भाई कोई चीज जो आटे वाला है वो तो आटा रख दिया, जो नमक और दानी है उसमें नमक के और मसाला मिर्ची मसाला रख दिए हैं, कुछ बर्तन हमने खाली रख लिए हैं कि अगर कोई चीज और बढ़ गई तो उसको कहाँ डालेंगे। इस तरह कुछ एक चीजों को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटीन को प्रिजर्व करने के लिए, और जितने भी फूड स्टफ्स आ रहे हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको स्पेशली प्रिजर्व करके रखने के लिए कि जब जरूरत होगी इस्तेमाल करेंगे। आप देखें ना कई लोग बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े मोटे मोटे हो जाते, क्यों, क्योंकि उसको हम वैसे तो बोलते हैं फैट रेजिस्टेंट सेल्स डेवलप हो गए हैं और उनमें बहुत मोटे हो रहे हैं, भावे रोटी एक ही खाते हैं, चपाती एक आधी होती है, लेकिन फिर भी वो मोटाई में मोटे हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं रोटियां से पांच सात खाते हैं फिर भी दुबले पतले हैं। तो ये सब वैक्यूल्स जो होते हैं, हमारे खाली पांडे खाली बर्तन होते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा चीज को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। जो भी चीज सेल डिवीजन के हालात में बच गई है कि इसको क्या करें भाई, इसको ठीक है ऐसे है कि इसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जब इसकी जरूरत होगी, जब देखेंगे कि भाई डिवीजन करते करते इसको गाय भैंस ज्यादा चलेगी, इसको गाय भैंस कम चलेगी, ये जो स्टोर किया आसमान है उसको दे देंगे। तो इसी तरह जितने फैट या और चीजें जो प्रिजर्व बॉडी में हो जाती हैं, जो जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, उन चीजों को कहाँ रखा जाए, वेस्ट में भी नहीं निकल रही, वेस्ट में भी नहीं निकल रही, तो सेल के अंदर जो रहती हैं वही मैंने फैट का ओबेसिटी का आपको ये दिया कि इसकी जो बॉडी में ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं जो प्रिजर्व करने की जरूरत है, और उसके लिए कुदरत ने वैक्यूल्स छोड़े हुए। इसी तरह ही इसमें एयर बबल्स होते हैं जिसमें हवा स्पेशली रहती ही है कि भाई अगर कहीं सांस लेने की दिक्कत आ गई तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। इसीलिए कई बार नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो कुछ समय के लिए हम गुजारा कर सकते हैं, उसी वक्त ही मरते नहीं ना मरते, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर प्रिजर्व्ड एयर कुछ ना कुछ रहती है, पर उसकी लिमिट कितनी है, 3 से 5 मिनट की, इतना ही होता है। और क्योंकि फिर सेलों का आपस में लिंक टूट जाता है, एक सेल से उधारी लेनी मुश्किल हो जाती है, तो ये सब सारा इस तरह काम चलता है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक और अंग है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अब भाई ये पूरा कुछ मैंने बता दिया, भाई ये खुराक जाएगी अंदर, ये ऐसे सिंथेसाइज होगी, इससे प्रोटीन बनेगा जी, उसके बाद ये जीन्स क्रिएट होंगे जी, डीएनए क्रिएट होगा, आरएनए क्रिएट होगा, ये प्रिजर्व किया जाएगा, ये करेक्टर प्रिजर्व कर लेंगे, सब कुछ तो मैंने बता दिया। लेकिन जो खुराक आई है यार, हजम कैसे होगी? हम कहें कि हमने रोटियां खा ली, अब मैंने तो आप सब लोगों को बताया है कि कैसे कैसे डाइजेशन का सिस्टम चलता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह में सलाइवा आता है जिसको हम टाइलन बोलते हैं। टाइलन का काम कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम खुराक में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, यही तत्व है ना हमारे, चाहे साग में हो, चाहे घी में हो, चाहे किसी में, असल में जो चीज अंदर जा रही वो वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही सब चीजें जा रही है। और इन सब चीजों को हजम करने के लिए अलग अलग पदार्थों की जरूरत है, और वो जो अलग अलग पदार्थ हैं उन सब चीजों को पैदा करना, प्रिजर्व करके रखना एक और अंग, ड्रम है हमारे पास। ये ड्रम की शक्ल के होते हैं, गोल गोल होते हैं और बर्तन है समझ लग कर लें, इनमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, एंजाइम्स भर रहे हैं, भूख लगी ना, पेट आप करके खा लिया ज्यादा, अच्छा भाई वो हाजमे की गोली ले लो, वो चूर्ण ले लो, तो चूर्ण का मतलब क्या होता है, हम लोग इस लाइसोसोम को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि भाई तेरे अंदर जितना भी एंजाइम्स भरा है वो निकालो, ताकि ये जो चीज मैंने खाई है हजम हो जाए, उसको हजम करने के लिए ये तुम्हारी जरूरत है। तो लाइसोसोम क्या है, इस तरह के पैकेट हैं जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं, और पूरे शरीर में मुंह से लेकर नीचे तक ये पूरे पूरे शरीर में इसी तरह ही है, हर एक सेल का एक पार्ट है, कि जैसे मुंह में मैंने आपको बताया ना टाइलन है, तो मुंह में टाइलन जितनी भी है उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जाते ही, ब्रेड खाई आपने, आलू खाया आपने, ये जाते ही यहीं से मुंह से एक हजम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स लाइसोसोम्स के हैं, नीचे जाएंगे स्टोमक में जाएंगे तो वहां पर HCL पैदा होगा, वहां पर पेप्सिन पैदा होगी, इसी तरह ही आगे जाएंगे तो बाइल आ रहा है, तो बहुत सी चीजें हैं जो हर एक तरह के खुराक के तत्व को हजम करने के लिए कुदरत ने एक नियम बनाया है कि इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी, वो सब चीज प्रिजर्व कहां है, वो रखेगा कहां, उसके लिए वो बेचारे पसारी की दुकान में देखो ना, अलग अलग खाने बने होते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसी तरह ही कुदरत ने बाकी तो सारा कुछ कर दिया, न्यूक्लियस का भी काम कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी कर दिया, सेंट्रोसोम का भी कर दिया, सेंट्रीओल्स के बारे में बता दिया, वह कुल खाली खाने हैं, ऑक्सीजन भरी हुई है वो भी है, वो सारा कुछ तो हो गया, फैट के ग्लोबुल्स चल रहे हैं वो भी हो गया, लेकिन ये जो लाइसोसोम है ये इस तरह है कि इसमें एंजाइम्स भरे हैं, साडा चूर्ण हमारा ये जो चूर्ण है ना, वो चूर्ण इसी में है कि किसी चीज को हजम करने के लिए कोई चीज पदार्थ चाहिए तेज करने के लिए, तो ये लाइसोसोम्स है। तो ये लाइसोसोम्स हर एक चीज को खाने के बाद हजम करने का मतलब ये है कि उससे एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल से वेस्ट बाहर निकलता है, खून में जाता है, खून अलग अलग सर्कुलेट करता है, उसके मुताबिक उसका वेस्टेज निकलना शुरू हो जाता है। तो ये लाइसोसोम हमारी आखिरी बात मैं समझता हूँ आज के इस लेक्चर की है कि भाई कुदरत ने हर तरह के प्रबंध किए हुए हैं, लाइट रोशनी भी है, सामान सारा रखा हुआ है, लाइट रोशनी भी है, उससे चलेगा तो काम होगा, और ये सब चीजें जब जब ना हो, बोलते हैं ना अब मैंने खाना खाया तो यही रुका हुआ, हजम ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या खा, रोटी तो एक ही मैंने खाई थी, कुछ ज्यादा खाना भी नहीं खाया था, बार हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास लाइसोसोम्स की गिनती कम है, उसमें एंजाइम्स नहीं है, उसमें वो चूर्ण नहीं है जिससे जो आपने खाया वो हजम हो जाए। परेशानी से आपको समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम्स का काम क्या है। इसका काम है खाई हुई खुराक को हजम करना, उस तरह के अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोटीन खाए, अंडा खा लिया है ना, तो अंडा आम रूटीन में डाइलिन इसको हजम नहीं ना करेगी, तो इसके लिए अलग तरह की कुछ और चाहिए ना। तो सेलों के अंदर लाइसोसोम्स में वो चीज भरी होगी जो इस अंडे को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी, फैट को अमाइलेज में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अब ये खून में मिलने योग्य है, ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, फैट सीधा घी तो हमारे खून में नहीं ना जाएगा, किसी और शक्ल में जाएगा ना, तो उसको उस शक्ल में लाने का मतलब है हाजमा। किसी भी खाई हुई रोटी को सब्जी को हाजम करने की नौबत तक ले जाना, इस तरह उसको कन्वर्ट कर देना कि अब ये खून में शामिल होने लायक है, हो सकती है, मिक्सअप हो जाए, ऐसे नहीं, अलग नहीं होगा, इतना पीस दिया हमने इसको, इतना इसको रगड़ दिया है कि अब इतना सॉफ्ट हो गया कि जैसे हमारा ब्लड है। और ये काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की के अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स है, इसको मशीन समझ लो, रगड़ने वाली मशीन समझ लो, या इसमें समझ लो कि किसी चीज को गोलने, असल सूर्य एसिड है तो किसी के ऊपर डाल दो तो वो गल जाएगी। हाँ जी, सो ये सब चीजें आज का प्रोग्राम, हाँ मैं समझता हूँ मेरा टाइम हो गया, और ये सेल को हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम से, कि अब शरीर जवान हो गया है, अब ये बेचारा इस एनवायरमेंट के हवाले से, इस खुराक के हवाले से, अपने तरीका का रहन सहन के हवाले से किस किस हालात का सामना करेगा। बच के तो आ गए हम, बड़ी मुसीबतें झेली, अब इतना बड़ा शरीर बन गया, बावजूद इसके भी हम बच गए, बच गए, लाखों करोड़ों की गिनती से बचते हुए हम बच गए, जवान भी हो गए हैं। अब इसके बाद और मुसीबतें हमारे सामने जो आएंगी, जिनको हम बीमारियां बोलेंगे, उसके बारे में वेरवा हम आगे वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधु, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एंड कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन प्रोग्रामों से कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी, और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको, और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं, और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई इस तरह का आपका बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको बताना ही है कि और लोग भी सुन लें। इतनी हमदर्दी आप उनसे करें, मेरे से तो नहीं, उनसे हमदर्दी करें ताकि वो भी सुन लें और उनकी भी जानकारी में वादा हो, हम उनकी भी सेहत अच्छी रह सके, अपनी सेहत का बचाव कर सके। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। परसों फिर मिलते हैं, श्रोतियों सुनते रहा करो, प्रोग्राम बहुत इंपोर्टेंट डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हुंदा, और अपने साथियों दोस्तों भैन पर इधर तुसी घर दे विच ला के फोन उच्ची आवाज दे विच सारा परिवार बह के सुन सकते हो, और इधर विच बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मिलते हैं जी फिर, थैंक यू
0: जी, सत श्री अकाल।
1: थैंक यू, सत श्री अकाल।

0: रणवीर सिंह, बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओ खुशिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान गंगा सिखों का निशान। दूर तेरा जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

0: 3000 व्यक्ति रोजाना हिरासत विच लैण दे चक्कर विचला टीचा पूरा करन दा मतलब ए नहीं है कि जेड़ा अगे थोड़ी नजर च आ गया पिया काला जिहा ब्राउन जिहा खाकी जिहा हैगा इनू फड़ लो ओहदा मतलब जज साहब ने क्लीयर कर दिता कि इहदा मतलब ए नहीं हैगा तुसीं हुण 3000 दा कोटा पूरा करना ते तुसीं जेड़ा भी आ गया मूहरे च आए हो सिटी जाने ओहदे कोल डाकूमेंट भी है हरेक नूं जेड़ा आउंदा तुसीं चक के अंदर दे दिओ। ओह कहिंदे इस गल दे नाल मैं सहमत हैगा आ जिस विच छोटे बच्चियां दी सोच उपर बजी साथिया देखो खाकसा भी जेड़ा छोटा बच्चा हुंदा ना 5 साल तक खाकसा भी ओह भी
1: दिमाग ते जेड़ी चीज लगी ना ओह सारी उम्र रहनी है जी
0: सारी उम्र रहनी है बस ओनू जेड़ा सदमा जिन्हू कहिंदे दिमागी परेशानी है जेड़ी ओहदे अंदर पैदा हो जानी है खाकसा जी जिन्हू अपनी पंजाबी भाषा दे विच कहिंदे बच्चे नू जोर नाल झिड़का नहीं मारना चाहिदा ओह सहम जांदा हुंदा सो ओह जेड़ा सहमणा शब्द आ ओही इह शब्द हैगा आ पर ओ जेड़ी इमीग्रेशन है दे डोंट केयर उन्हां नू एही आ पे असीं तां अपना 3000 दा कोटा पूरा करना चाहे कोई बच्चा होवे चाहे ओ जो मर्जी
1: हो सरकार फिर शटडाउन हो गई है जी इन्हां दी जेड़ी
0: हां जी हां हां जी ओही उत्ते आपां गल करदे आ अगे जाके जी ते ओ फिर सारी उम्र दा जेड़ा उन्हां नू पछतावा जेड़ा ओ लग्या रहिंदा ते अगली खबर जेड़ी हैगी है कक्ष साहब जी इटली दे विच मिलान जेड़ा उत्थों दा शहर हैगा उत्थे ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਏਜੰਟ ਉਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
1: ਅੱਛਾ ਜੀ
0: ਅਮਰੀਕਨ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰੂਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
1: ਅੱਛਾ ਜੀ
0: ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੋ ਪਤਾ ਨੀ ਡਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਪਈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਭੋਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਉਥੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਥੇ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪਿਆਜ਼ਾ 25 ਅਬਰੀਲੇ ਸਕੁਏਅਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ 25-25 ਤੇ ਅਬਰੀਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ 1945 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਸੀ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1945 ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ TGIL ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਇਹ ਅਤੇ ANPI ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਾਰਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
1: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ
0: ਪਤਾ ਨੀ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਐਨੀ ਥਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਖ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 70-100 ਤਕੜੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ
1: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਟਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਣ ਚਲੋ ਵਾਪਸ
0: ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਦੇਖੋ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ
1: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਮਚ
0: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਦੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਚਣਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਰੂਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਦਾ ਨੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਲੱਗ ਏਦਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਹਟੇ ਆ ਖਾਕਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਬੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੇਟਲੀ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
1: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ।
0: ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਖੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਆ ਰਫਲਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ 25-30 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ,
1: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਚ ਕੇ।
0: ਉਹ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
1: ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਆ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ,
0: ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇ ਆ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ,
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੀੜੀ ਨੀ ਸੀ ਬਾਹ ਗਿਆ ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ, ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਆ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ
1: ਜੀ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ,
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਆਹ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੀਕਰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਹ ਇਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ CEO ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
1: ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ,
0: ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ।
1: ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਕ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਆਪ ਮਰੇ ਜੱਗ ਪੜ ਲੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੁਮੋਰੋ ਦਾ ਹੋਲ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂਸ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦਾ ਦਹਿਰਾ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ,
1: ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
1: ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ,
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਵਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਯੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ
1: ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਰਨ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ,
0: ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
1: ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਟਾਈਮ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਛੱਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
0: ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਆ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ 2-3 ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
0: ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੱਬਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਡੈਮੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ
1: ਜੀ, ਉਹ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਨੌ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉਹ ਡਨੀਪਰੋ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਲਦੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ।
1: ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ
0: ਜੀ, ਸੁਣਨ
2: ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
2: ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕਰ। ऐसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग जीवन से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे ये जीवन चला, कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से हर्डल इसके जीवन के रास्ते में आए, कैसे ये बना था, कैसे माँ के पेट में रहा था, कितनी देर रहा था और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, फिर कैसे ये माँ के पेट से बाहर आया जिसको हमने लेबर कहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी। उसके बाद नवजीवन की यात्रा शुरू हुई और नवजीवन की यात्रा हमने एक साल तक चालू रखी और उसके बाद इस एक साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुई जीवन में वो पूरी मैंने आप सब लोगों को बताई थी और क्या हमें करना है, कैसे इसका बचाव करना है, क्या क्या वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे कैसे चला, ये सब चीजें इन प्रोग्रामों में हम आपके सामने रखते आए हैं। और उसके बाद हमने ये कहा कि एक साल के बाद एक टाइटल बदल गया और उस टाइटल को हमने नाम दिया था टोडलर्स। टोडलर्स एज को हमने एक से बाद 5 साल तक चालू रखा और उसके बाद इस टोडलर एज में भी बहुत सारी वही मुसीबतें, वही बीमारियां कंटिन्यू रही जो नवजीवन के समय में इस जीवन के साथ घटी थी और उनका क्या क्या उपचार उपराला हम लोग कर रहे थे वो अभी चालू था। और उसके बाद और बहुत सी नई प्रॉब्लम्स इसमें शामिल हो जाती हैं, उनके बारे में पूरा वेरवा मैंने आप सब लोगों को बताया था और मैंने ये कहा था कि ये जो प्रोटेक्शन वाला प्रोग्राम था हमारा जिसको हमने वैक्सीनेशन कहा, उस प्रोटेक्शन वाले प्रोग्राम को हमने 14 साल तक कंटिन्यू किया जिसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज देने के बाद हम लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं या यूं कहें कि हम लोग ये समझते हैं कि ये बीमारियों की बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं ना जो उम्र के हिसाब से आती। अब छोटे बच्चों को प्रोस्टेट की बीमारी तो नहीं होगी ना, बड़ों को ही होगी ना। इसी तरह ही बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो उम्र के हिसाब से हैं और उसका भी निर्वाह मैंने एक प्रोग्राम में आप सब लोगों को दिया था कि कुछ एक बीमारियां एज के साथ बढ़ी हुई हैं वहीं पर रहती है। तो 14 साल कहने का मेरा मतलब ये था कि एक तो हम ये समझते हैं कि कुछ एक बीमारियां जो जीवन से बचपन से रिलेटेड हैं उनका वो दौर खत्म हो गया, उनका वो समय खत्म हो गया, इसलिए हम सोचते हैं कि अब इन वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि यहां तक पहुंचते पहुंचते वो हमारा उम्र का फेज निकल गया और इसके बाद ये जो बूस्टर डोज हम लगाते हैं हम ये समझते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसकी प्रोटेक्शन इस जीवन के लिए अब आगे जाने वाले काफी समय लंबे तक रहेगी। हाँ, उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ इस तरह की बीमारियां भी हैं जो जीवन में दोबारा भी आ जाती हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं दोबारा आ जाने कहने से मतलब ये है कि जो कॉजेटिव फैक्टर हम समझते हैं मटीरियलिस्टिक होते हुए, मटीरियलिस्टिक कहने से मतलब कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये समझती है कि बीमारियों के कारण मटीरियल है, जो हम नहीं समझते, होम्योपैथिक के तौर पर हम नहीं समझते इस चीज को, लेकिन हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर हम समझते हैं कि बीमारियां पैदा करने वाले जो कारण है ना वो मटीरियल है। तो वो मटीरियल कारण जो है हम ये समझते हैं कि कई बार एक बार जीवन में आने के बाद शरीर में लेटेंट स्टेज में पड़े रहते हैं और फिर कभी जिंदगी में दोबारा उसी तरह का एक्सपोजर हो गया तो फिर दोबारा कई बार उसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो उसमें आ सकती हैं। और ये हमने आपसे कहा था और उसका हमने कहा कि जब ऐसा होता है तो फिर हम उसका नाम बदल देते हैं, हम कहते हैं कि भाई नहीं, इसका नाम अब मीजल्स नहीं रहा, इसका नाम पॉक्स नहीं रहा, इसका नाम वेरिसेला नहीं रहा, हम कहते हैं कि ये शिंगल्स हो गई है। तो इस तरह बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो अपना नाम उसका हम चेंज कर देते हैं लेकिन उसके जो कॉजेटिव मटीरियल फैक्टर है ना वो वही रहते हैं। तो इस तरह की बातें भी मैंने आप सब के सामने की थी और टोटलर एज के बाद एक ऐसी एज आई थी जिसको ना हम बच्चा कह सकते हैं ना हम जवान कह सकते हैं और उसको हमने कहा था अडल्सेंस एज। और उस अडल्सेंस एज को हमने कहा था कि भाई ये एज 7 साल के बाद कहो, 6 साल के बाद कहो और ये फिर आगे 18 साल तक, 14 से 18, कुछ लोग इसको 14 साल तक मानते थे, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं 18 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तब तक ये जो डेवलपमेंट होने वाली बॉडी में वो पूरी हो चुकी होती है तो उसको हम अडल्ट मानने शुरू कर देते हैं। कानूनी तौर पर भी अडल्ट मानते हैं, वैसे शारीरिक तौर पर भी इसकी जो डेवलपमेंट हो जाती है वो वहां तक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई अब ये अडल्ट हो गया है। तो इससे पहले क्या था, ना वो बच्चा था ना वो अडल्ट था, तो उस फेज की जितनी भी प्रॉब्लम थी, उस फेज के हालात के जितने अचंभे थे, क्योंकि कुछ अचंभे भी तो मैंने आपको बताया ना कि लड़की से लड़का होगा, लड़के से लड़की होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें जो हमारे नॉलेज में पहले नहीं थी, अब मेडिकल साइंस उसके बारे में जानती है, जेनेटिक्स ने इतनी स्टडी कर ली कि भाई ऐसा होता क्यों है, अब हमारे लिए वो अचंभा नहीं रहा, पहले वो अचंभा था अब अचंभा नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसकी डिटेल मैंने इन प्रोग्रामों में आपके सामने रखी थी। और उसके बाद एडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते इस शरीर में क्या क्या तब्दीलियां आई, और ये एक ऐसा दौर था, ये एक ऐसा समय था जिसमें फिजियोलॉजिकली फिजिकली शारीरिक तौर पे भी उस कार्यक्रम के तौर पे भी स्पष्ट हो जाता था कि जो लड़का है वो लड़की है, लड़का है वो जो लड़की है वो लड़की है, तो मतलब बाहरी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि ये लड़की ही है, अंदरूनी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि जैसे मासिक धर्म आना शुरू हो गया, जैसे स्पर्म बनने शुरू हो गए, सीमन आना शुरू हो गया, जैसे आवाज की चेंजेस मैंने आज सब लोगों को बताई थी, इसको हम लोग ये जो सभी निशानियां पैदा होती है ना इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, तो वो जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं वो पूरे आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त फिर हमने एक स्टॉप लगा दिया था और उस स्टॉप को लगाने का मतलब ये था कि अब हम इस जीवन को अडल्ट एज में ले आए हैं, लेकिन एक सवाल पैदा हो गया था कि अब ये पूरे का पूरा शरीर जो बना हुआ है इसकी बनतर के बारे में थोड़ी जानकारी कर लें ताकि हमें पता हो कि इस शरीर में अगर कोई बीमारी आती है, अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कहां पर क्या हमें खोजना होगा, क्या हमें ठीक करना होगा, और तभी ये जो बीमारियां हैं वो रूट आउट हो सकती, कौन चीज है जो इस शरीर को चला रही है फिजियोलॉजिकली, क्योंकि हमारा काम मैंने ये कहा था कि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो एलोपैथिक सिद्धांत से या मटीरियलिस्टिक व्यू से थोड़ा सा और अलग है, और उसको हमने कहा था कि ये हम बाद में आपके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे थे कि जो हमारी लिमिट है फिजिकल की, पदार्थ तक की, जो पदार्थ में हमें दिखाई दे सकता है उस तक की लिमिट रखते हुए मैंने आपको ये सब कहा था कि भाई ये बनतर जो शरीर की बनी है अल्टीमेट इसका अंदरून, इसका माइन्यूट कहां पर है, जिसमें कोई ना कोई नुक्स पड़ता है तो फिर इस शरीर में बीमारियां बड़े पैमाने पर दिखाई देती। मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी दे दी थी, जो वो प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है और उसमें जो कोई स्पॉट आ जाता है तो वो पर्दे पर होता है। हम लोग पर्दे से डील कर रहे हैं, ये जो शरीर है वो हमारा पर्दा है हमारी जीवन शक्ति का। और वो जो इसको जीवन शक्ति को अगर हम थोड़ा सा पदार्थिक रूप में लें तो सेल पे, तो असली बात मैंने आप सब लोगों को ये बताई थी फिजिकल रूप में कि ये शरीर की बनकर सेलों से बनी हुई है, ट्रिलियंस सेल हैं, लेकिन उन सब सेलों में एक समानता है। समानता क्या है कि उसकी बनकर, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, कार्यक्रम करने का तरीकाकार, एक दूसरे को चीज बांटने का तरीकाकार, एक दूसरे से चीज इकट्ठी करके बाहर भेजने का तरीकाकार, ये सब एक था। और अलग अलग अंगों को बनाने के लिए इसकी शेप चेंज हो जाती थी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था या फंक्शन थी वो वही रहती थी। तो ये सब बातें मैंने आप सब लोग के सामने रखी थी, और उसके बाद फिर मैंने सेल के बारे में आप सब लोगों को बताना शुरू किया था कि भी सेल जो जिसको सिंगल यूनिट या मिनिमम यूनिट हम बोल रहे हैं वो है क्या, उसकी डिटेल मैंने आप सबके सामने रखी थी, उसकी बनकर क्या है वो सब हम आप सामने रखी थी, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, या और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी चीजें काम करने वाली हैं जिसकी अलग अलग ड्यूटी है, तो वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं जो बड़े पैमाने पे शरीर पे हमें बीमारी के तौर पे दिखाई देते हैं, या अगर ये तंदुरुस्त है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो शरीर की फंक्शनिंग पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे शरीर नॉर्मल तौर पे काम करता है, और अगर इसमें कोई नुक्स आता है तो अल्टीमेट वो नुक्स कहां पर आ रहा है। ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को इन प्रोग्रामों में पहले बताई थी, और उसके बाद फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसको हमने कहा था कि इंडिविजुअलाइजेशन, हर आदमी एक दूसरे आदमी से अलग है, चाहे ट्विन्स हों तो भी उनकी मानसिकता एक दूसरे से डिफर हो जाती है, चाहे वो शारीरिक तौर पे एक जैसे ही लगेंगे लेकिन उनकी मानसिकता डिफरेंस हो जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हम कहें कि सभी लोग जो एक ही बीमारी का डायग्नोसिस लेकर आते हैं उसको जो निचली सतह है हमारी, वो जो सेल की सतह है उससे ऊपर की सतह पर हम पहुंचते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई नहीं, हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल एहसास में, फीलिंग में एक दूसरे से अलग है। और इसी तरह ही अगर हम माइन्यूट चेंजेस जो आती हैं अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे किसी चीज में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं तो फिर सभी में वही बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन इससे और बारीकी में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि नहीं, एहसास, फीलिंग्स, डिजायर्स जो हैं वो सब में अलग अलग आ जाएंगी। और उसकी एग्जाम्पल भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई अगर चार पांच पॉट कलर के होंगे, अलग अलग कलर हैं हर एक पॉट में, उन सभी में से हम लोग एक अलग पॉट में अलग रंग सभी में एक एक चमचा मिलाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि सभी पॉट्स में डिफरेंट कलर आता है, एक जैसा कलर नहीं आता है, क्योंकि उसका अपना भी रंग था ना, उस पॉट का अपना भी तो रंग था ना, इसमें जो एक मिक्स किया गया जो सभी में एक ही मिक्स किया गया। तो बताना मैं ये चाहता था आप सब लोगों को कि मान लिया जाए किसी को मलेरिया मच्छर काट लिया, और अब मच्छर काट लिया तो हमने कहा कि इसको मलेरिया हो गया। मलेरिया क्यों कहा हमने, क्योंकि कुछ एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी कि शिवरिंग, ठंड लगकर बुखार हुआ, पसीना आकर बुखार उतरा, ये सब उसकी जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है जिसके बेस पे हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं, या ब्लड के तौर पे उसकी रिंग जो है मलेरिया रिंग चेक करते हैं हीमोग्लोबिन में, या ऐसे कहें कि हमने पैथोलॉजिकली भी और सिम्टोमेटोलॉजिकली भी इसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेकर कह दिया कि इसको मलेरिया है, या किसी को कह दिया कि भाई इसको हैजा है, या किसी को कह दिया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसके आधार पे हमने कह दिया था, लेकिन ये सभी फिजिकल सिम्टम थे। ये मैंने कहा था कि इस जीवन को चलाने वाली कोई चीज आदिक है, पावर है, इंडिविजुअल है, सभी की अलग अलग है, और जिस तरह वो पॉट्स में कलर अलग अलग हो गए थे ना, इसी तरह ही जब कोई बीमारी या ऐसे कहें कि कोई जरासीम किसी बॉडी पे इफेक्ट करता है तो उसके सामने जो विजिबल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो तो एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो उसका लाइफ फोर्स है, जो इस जीवन की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, अगर उसके लेवल पे जाकर उसको हम शनाख्त करना शुरू करेंगे तो वो हमें अलग दिखाई देगी। कोई जो है आपने देखा होगा कि मलेरिया के लोग होते हैं कि उनको ठंड लग रही है, ले कपड़ा नहीं लेना चाहते, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना है, कुछ लोग बोलते हैं पानी पीना है, और इस तरह ही अलग अलग तरह की क्रेविंग्स हमारी होती हैं, और खाने में भी, पीने में भी, रहने में भी, बात करने में भी अलग अलग तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो सभी पेशेंट में अलग अलग होगी। और ऐसा भी है कि एक आदमी की जो नेचर पहले थी बीमार होने से पहले, अब वो बीमार हो गया किसी भी बीमारी से, तो उसकी नेचर में, उसकी फीलिंग में, उसकी डिजायर में, उसके एवर्शन में चेंज आ जाती है, लेकिन हम लोग इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हम क्योंकि हम लोग मटेरियल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना बात को, मटेरियल का मतलब है कि आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस हर चीज को फिजिकली देखना चाहती है, कि बंदा तो कह रहा है कि मैं बीमार हूं, और बंदा उसी वक्त डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसी वक्त उसको भेजे लैब में, तो लैब के टेस्ट जो भी आएंगे वो कहें कि भाई तुम तो बीमार नहीं हो क्योंकि तुम्हारे तो टेस्ट नॉर्मल हैं, क्योंकि हम लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो निर्धारित किया है उसका स्टैंडर्ड हमने निर्धारित किया है, और वो स्टैंडर्ड एक एज एन एवरेज स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड नहीं है। किसी आदमी को टेम्परेचर अगर होता है 98.4 हमारा, किसी का सब नॉर्मल ही रहता है, उसी में ठीक रहता है, अगर किसी का 98.4 हो जाता है या 99 हो जाता है तो वो बहुत फीवरिश महसूस करता है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर 120 हम नॉर्मल मानते हैं, डायस्टोलिक 80 हो गया या सिस्टोलिक जो है 120 हो गया, ये हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं अगर उनको 120 80 हो जाता है तो वो बोलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ है ये, इसने क्या साबित किया? इसने ये साबित किया कि मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो हमने एज एन एवरेज लिया था वो सभी पे फिट नहीं बैठता, वो सभी के लिए इंडिविजुअल है और हर आदमी का वो इंडिविजुअलिटी है। तो क्या हुआ कि लैब से टेस्ट आया तो टेस्ट ने कहा कि तुम्हारे तो टेस्ट सब नॉर्मल आए, मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फिक्स किया था वो एज एन एवरेज लिया था और सभी के लिए नहीं था। तो ये बात कहकर मैं आपको साबित ये करना चाहता हूं कि हर आदमी एक दूसरे से इंडिविजुअल है और उसकी फीलिंग्स, डिजायर्स, एवर्शंस दूसरों से इंडिविजुअल हैं, बेशक बेशक सेल तक उसकी बनतर सेम है, उसी तरह का कार्यक्रम है सेल का, उसी तरह की स्ट्रक्चर है सेल का, उसी तरह सारी कार्रवाई वो सेल करते हैं, लेकिन जहां तक उससे ऊपर के लेवल की बात आ जाती है तो वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो फिर ये कहकर बात मैंने आप सब लोगों को ये पहचानने की कोशिश की थी कि अगर हर आदमी इंडिविजुअल है और अगर हर आदमी में जो इस शरीर को चलाने वाली पावर है वो इनविजिबल है, पावर है, तो मतलब फिर ट्रीटमेंट तो उसका करना चाहिए ना। असल में ट्रीटमेंट तो उस चीज का होना चाहिए जो इस शरीर के नॉर्मल और एबनॉर्मल हर तरह के कार्यक्रम के लिए जिम्मेवार है। कोई बादशाह अगर किसी देश पे कब्जा कर लेता है तो क्या होता है, उसके थाने, उसकी कचहरी, उसके सब जितने भी कार्यक्रम कानूनी चलने वाले हैं वो सब तो सेम ही रहते हैं, लेकिन कानून बदल जाता है, कार्रवाई बदल जाती है, क्योंकि अब नए बादशाह की चलती है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जीवन शक्ति जो शरीर में है वो इनविजुअल पावर है, इनविजिबल पावर है, और अगर हमने उसको कुछ हेल्प करनी है, क्योंकि कोई इसी तरह की वबा, कोई इसी तरह की वबा ही है जो इस आदमी के ऊपर इफेक्ट की, उसकी वाइटलिटी के ऊपर इफेक्ट की, वाइटलिटी मजबूर हो गई कि इस शरीर का चलन बदला जाए, इसमें पसीना लगाया जाए, इसको ठंड लगाई जाए, इसको प्यास लगाई जाए, इसको अनकवर किया जाए, कवर किया जाए, ये सब जितनी भी हरकतें हम करते हैं, प्यास लगे ना लगे, ये सब हरकतें हैं, ये उस चीज की हरकतें हैं, ये उस चीज की फीलिंग एंड सेंसेशन है जो इस शरीर की जिम्मेवार है, जो इस शरीर की नॉर्मल और अबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है। अगर वो नॉर्मल और अबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है तो फिर मतलब क्या, जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी को मलेरिया मच्छर ने काट दिया तो उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक इन्फ्लुएंस है जिसको वैसे आम बोली में एशंस कह देते, ये इस दवाई का एशंस है, ये इस चीज का एशंस है जी। इसी तरह उसका जो इन्फ्लुएंस उसने बॉडी पे इफेक्ट किया, बॉडी में जो रेफरेंस भेजा ब्रेन को, ब्रेन तक तो हमने पढ़ लिया ना पूरा कुछ कि ब्रेन के नर्व के साथ ये बॉडी हमारी जुड़ी हुई है, ब्रेन से ये जो लैंग्वेज थी वो डीकोड हुई, उस पावर तक पहुंची, उसने क्या फील किया, उसको इरेडिकेट करने के लिए जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें शिवर थी, जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें पसीना था, जो सिम्टम उसने पैदा किए वो उसमें थर्सलेसनेस थी, या उसमें सिम्टम पैदा किए कि उसमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, ये सब चीजें उसकी वजह से थी। तो मेरा ये कहने से मतलब ये था कि अगर हम फिजिकल बॉडी को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की चीज है, ऐसे विश्वास नहीं हो सकता किसी, विश्वास इस पर बात पर तभी होगा जब आप इसका खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अगर उस चीज को जो असल जिम्मेवार है किसी चीज की, उस चीज को आप पकड़ेंगे, उस चीज को हेल्प की जरूरत है उसी रूप में हेल्प करेंगे, तो कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, तो कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इस फिजिकल शरीर को, जैसे किसी की टांगे पकड़ो, सिर तक पहुंचना है तो पांव पकड़ लो, पांव से आगे ऊपर चलते रहो, ये तरीकाकार हम लोगों ने अपनाया हुआ है। और यही डिफरेंस है एलोपैथिक स्टाइल में और होम्योपैथिक स्टाइल में, क्योंकि हम इंडिविजुअल करेक्टर नहीं दे रहे, किसी भी बीमारी के इंडिविजुअल करेक्टर नहीं ले रहे, क्योंकि वो इंडिविजुअल करेक्टर जो है वो हमारी पहुंच से ऊपर की बात है, क्योंकि हम फिजिकल रोग हैं, हम पदार्थ तक ही लिमिट रखते हैं, हम सेल तक ही अपनी खोज रखते हैं, अगर सेल से ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली हम वहां पर पहुंचेंगे कि इस शरीर का रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है। मैंने यहां पर पहुंचते हुए मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दी थी कि अगर कोई ये कहे कि हवा में लून घोल दो, नमक घोल दो, तो नहीं घोला जाएगा ना, तो लगता है ये आदमी मूर्ख है, हवा में नमक घोलने की हमारे हमें कह रहा है। लेकिन अगर आप अमोनिया गैस को, गंध को स्मेल करते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो अमोनिया की गंध है, इसका मतलब अमोनिया का साल्ट इस गंध में, इस हवा में मिक्स हुआ, कब हुआ, जब ये उसकी शेप में आ गया। इसी तरह ही किसी भी बीमारी के जरासीम या किसी भी दवाई का इफेक्ट मटेरियल होते हुए भी उसका जो एशेज है, उसके जो इफेक्ट हैं, वो हायर लेवल पे उस वाइटलिटी पर इफेक्ट करते हैं और वो वाइटलिटी मजबूर हो जाती है उस इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम पैदा करने के लिए, जिसका हम अलग अलग बीमारी के तौर पे डायग्नोस करके नाम रख देते हैं। और जो मलेरिया काटा है, मच्छर काटा है, तो मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की जितने भी कैटेगरी हैं, तीन चार हमने बना दी हैं, तो उसके मुताबिक उसके सिम्टम पैदा होंगे। हैजा होगा तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग फिजिकल रूप में पैदा, ये क्या कब पैदा हुए, ये तब पैदा हुए जब बीमारी पैदा करने वाली चीज का एसेंस ने ब्रेन तक, ब्रेन विजिबल है, ब्रेन हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी है, ब्रेन ने डीकोड करके इस शरीर की जीवन शक्ति जो इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उस तक पहुंचाए, उसने जो फील किया। मैंने उसकी ये भी एग्जांपल दी थी कि मान लिया जाए आपका उंगली किसी गर्म चीज से टकरा जाती है तो इमीडिएट एक सेकंड के हजारवें हिस्से में आपको वो ऑर्डर ब्रेन पर पहुंचता है, डीकोड होता है, वहां से होकर वापस ऑर्डर होता है, एकदम उंगली खींच लो, कितना समय लगता है आपको गर्म चीज को हाथ छूने के बाद एकदम खींचने में, इतने समय में हुआ क्या है आपको नहीं, हम लोग नहीं समझते, लेकिन हुआ क्या है कि ये सेंसेशन नर्व के जरिए ब्रेन तक गया, ब्रेन ने जी कोड करके मन जो हमारा मस्तक है या ऐसे कहें जो हमारी जो वाइटलिटी है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है शरीर के लिए उस तक पहुंचाया, उसने उसी वक्त उसको ऑर्डर दिया कि उंगली को पीछे की लो। तो ये सब बातें करने से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इस शरीर को चलाने वाली बीमारी में या तंदुरुस्ती में चलाने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस फिजिकल बॉडी से ऊपर है, और वही है जो फिजिकल शरीर से ऊपर किसी की इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल कैरेक्टर को निर्धारित करती है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा कि इवन ट्विन्स होते हैं ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसकी फीलिंग्स डिजायर वर्शन की आप बात करोगे तो डिफरेंट हो जाएगी। और यही बात होती है कि किसी बीमारी का चलन जब भी किसी का प्रकोप किसी के ऊपर होता है तो उस वक्त उसकी डिजायर अवर्शन फीलिंग्स पहले से बदल जाती है। जैसे वो बादशाह वाली मैंने बात कही, खाने वही कचहरियां वही कार्यक्रम वही, लेकिन रूल अब डिफरेंट हो गया, और जो रूल डिफरेंट हो जाता है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाई फिजिकल बॉडी। जिससे मैंने कहा कि प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है उसमें कोई स्पॉट आ गया है, अब उसमें से जो स्पॉट का वो जो पिक्चर हमारे पर्दे पर दिखाई दे रही है वो बड़ी दिखाई दे रही है, अब पर्दे को हम आगे पीछे कर रहे हैं। जो सिद्धांत अभी हम लेकर चल रहे हैं कि क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं ना, तो मटीरियल तक ही हमारी पहुंच अप्रोच है, और उसको मानते हुए हम लोग उस पर्दे को आगे पीछे कर रहे हैं। यहां पर आकर मैंने आप सब लोगों को ये भी कहा था, उल्टी वाली मैं वोमिटिंग वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, कि जो कुदरत जो आपकी वाइटलिटी इस शरीर के साथ करना चाहती है या जो उसको तकलीफ है वो आपको पहुंचाना चाहती है, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो इस बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ठीक नहीं उसको लगता, उसको वो निकालना चाहती है। वो एक्सप्रेस क्या कर रही है? उल्टी, जी कचा होना, मतलाना, वो इससे पैदा कर रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मटीरियल बॉडी होते हुए मटीरियल चीज को समझते हैं और हम लोग उसको उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सी बीमारियां दवाई खाने के बाद और बढ़ जाती है, घबराहट परेशानी और बढ़ जाती है, और हम लोग बोलते रिएक्शन हो गई है, साइड इफेक्ट हो गए। असल में क्या है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ अवर वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स थी जो वो चाहती थी कि मेरी हेल्प की जाए, ये शरीर में जो अंदर जो चली चीज गई है वो अनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसको बाहर निकाला जाए, या इसके जो इफेक्ट हैं इस बॉडी के सेलों को डैमेज करेंगे, इसको बाहर निकाला जाए। और आप जबरदस्ती कोई दवाई करते हो जिससे वो इफेक्ट बंद हो जाए, मतलब पर्दे को इधर उधर कर रहे हो, तो अल्टीमेट कुदरत क्या करेगी? परेशान हो जाएगी कि क्या करें आप। कोशिश वो करेगी फिर भी, इस जब तक जीवन है, जीवन स्ट्रांग है, तब तक ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, घबराहट में हो जाएगी, इसको टॉयलेट टट्टी लगा देगी, डायरिया लगा देगी जिसे वो निकले। अगर नहीं हुआ तो जब तक उसको वो अंदर से न्यूट्रलाइज नहीं कर लेती जो आपके अंदर गया था और उल्टी पैदा हुई थी, तब तक ये घबराहट ये परेशानी आपके साथ बनी रहे। तो ये बात करके भी मैं आपको वहीं पहुंचाना चाहता हूं कि असल इस बॉडी का जो इंडिविजुअलाइजेशन करेक्टर है जिस पे के बेस पर हमारा जीवन चलता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अगर इस जीवन को चलाने वाली कोई इंडिविजुअल शख्सियत इस तरह की है जो इनविजिबल है, तो फिर हम दवाई भी उसी तरह की ही देने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे अगर हम चलें, आपने देखा होगा कि एक आदमी शब्द पढ़ रहा है, एक आदमी बंसरी बजा रहा है, एक संगीत चल रहा है, कुछ लोग रोने लगते हैं, एक आदमी स्टेज पे खड़ा हुआ लेक्चर कर रहा है, और लेक्चर करते करते और वो लोग इतने जोश में आ जाते हैं वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये कहां असर हुआ? शरीर पे नहीं हुआ, किसी हायर लेवल पे हुआ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर तो कुछ किया ही नहीं, आपके हर लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है। और वो हर आदमी का नहीं होगा, सभी के सभी वहां बैठे सुनने वाले संगीत सभी रोएंगे नहीं, सभी नहीं रोने लगे, और वो लेक्चर सुनने वाले लोग सभी के सभी किसी को मरने मारने पर उतारू नहीं हो जाएंगे। हर आदमी की फीलिंग उस पर इंडिविजुअल होगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कहना आप लोगों को कि आप लोग बीमारी के तौर पर भी समझें, आप लोग इस शरीर की बंतर के तौर पर भी समझें, तो ये महसूस करें कि इसके चलन के रुकावट के लिए जो भी इसके चलन मतलब इसकी फिजियोलॉजी में, इसकी फिजियोलॉजी में अगर जो भी रुकावट आ रही है उसके पीछे या उसके लिए जिम्मेवार इसके ऊपर हायर स्टेज है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि भाई तो अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अब इसको अंदर का कहाँ करें भाई? नहीं, फिर भी वो वाइटलिटी ही जिम्मेवार है। मैं इसको फिर आपको समझाऊं कि अगर मुर्दे की टांग तोड़ दो, मुर्दा तो है ही, लिविंग बींग नहीं है अभी, उसकी टांग तोड़ दो तो उसमें कभी सूजन नहीं आएगी, कोई ब्लड भी नहीं निकलेगा, कोई उसको दर्द भी नहीं होगी, और जितने भी सिम्टम्स लिविंग बीइंग में उस एक्सीडेंट के पैदा होंगे ये सब साबित करेंगे कि सम हायर पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी। ऐसा हो जी, तो मेरे कहने से मतलब कि हर हालात में ही वो एक बॉडी, वो एक चीज इनविजिबल जो है हमारे शरीर की, वो ही इफेक्टेड होती है, उस पर ही किसी बीमारी का इफेक्ट होता है। डॉक्टर हैरिंग हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर हैरिंग ने कहा कि अगर जरासीम ही बीमारी पैदा करने वाले हैं तो लेट्स टेक, उसने वो जो घोल था कॉलरा बेसिलस का तो उसने पी लिया, तो कहता है मुझे कॉलरा हो जाना चाहिए ना, हैजा हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। इसी तरह ही ये कौन रिस्पॉन्सिबल था कि मेरी वो वाइटलिटी इससे स्ट्रॉन्गर थी, उसका इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह ही लोग मिसमेराइज करते हैं, मिसमेराइज करते हैं, क्योंकि मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल मिसमेराइज करता था, हिप्नोटाइज करके बहुत सी बीमारियां मैं ठीक करता था। मेंटल रोग जो, मेंटल बीमारियां क्या है, शारीरिक तौर पर सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हायर लेवल पे कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए हैं, उस हायर लेवल के इफेक्ट से बाद में ऐसा हो सकता है सेकेंडरी कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है वो हायर लेवल पे ही है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं जिनको हिप्नोटाइज करके भी हम लोग दुरुस्त करते थे और वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी तक ठीक ठाक हैं, अभी तक उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये वंडरफुल इफेक्ट था क्योंकि हमने उसकी वाइटलिटी को, जो असल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी इस शरीर के जीवन की चलन की, उसको स्ट्रॉन्ग किया था। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है ये साबित करने के लिए कि अगर हम उस इंडिविजुअल पावर तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएं, चाहे मेडिसिन से चाहे हिप्नोटिज्म से, तो हम बहुत सी बीमारियां जो इसकी वजह से पैदा हुई हैं, इसमें आए हुए विकार के वजह से पैदा हुई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। और इसीलिए ही हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। होम्योपैथिक तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, जो केवल फिजिकल तक अपना लेवल रखती है, उस तक अगर करते हैं तो फिर हम सेल तक रह जाते हैं। और उसकी परिभाषा भी मैंने आप सब लोगों को पहुंचा दी थी कि भाई ये एक लेवल है, लेकिन इस लेवल के लिए पाव सेल में जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जिसको हम आगे पैथोलॉजी बोलते हैं, इन सब चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हायर वाइटल पावर की है। और इसकी एग्जांपल मैंने आप सबके सामने रखी थी कि जितने भी डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं, मान लिया जाए टीबी के वार्ड में काम करते हैं, सभी को टीबी तो नहीं हो जाती, जितनी भी नर्सें हैं सभी को टीबी तो नहीं हो जाती। या मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी ये कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो था सभी को तो नहीं हुआ, सभी ने वैक्सीन प्रोटेक्शन भी नहीं ली, सभी मर तो नहीं गए, हालांकि बहुत सारे लोग मर गए उस वक्त कोविड-19 जब शुरू हुआ थे, बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह ही बहुत सी चीजों, जब जितनी भी बीमारी, इवन इन्फ्लुएंजा भी जब महामारी के तौर पे आया था तो उस वक्त हजारों लोग कोविड की तरह मर गए थे इसी तरह। और ऐसा ऐसा कोई भी बीमारी अगर आती है हमारी खुद की जीवन, जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी तो लोग जिंदा रहते थे ना, तब भी उनको बीमारियां होती थी, बेशक बहुत सारे लोग मर जाते थे, रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए साथ में कि बहुत से लोग बच गए थे, बच जाते हैं, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं, उनकी जनरेशन हम आगे चल रहे हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये सब चीजें साबित करती हैं कि फिजिकल से ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर की हर एक्टिविटी, चाहे तंदुरुस्ती की हो चाहे है बीमारी की हो, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही है। और इसी तरह ही दूसरा फेज इस चीज का, ये एक फेज मैंने आपको सब बता दिया कि बीमारी या तंदुरुस्ती इस शरीर की, बेशक मटीरियलिस्टिक होते हुए हम लोग सिर्फ टिश्यू चेंज देखते हैं, हम लोग सब सेल में आई हुई चेंजेस ही देखते हैं, लेकिन इसकी आई हुई सभी चेंजेस के लिए, सबसे छोटी बात तो सेल है ना, सेल में चेंजेस देखते हैं, लेकिन इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारी कौन है, वाइटलिटी है। और उसका दूसरा पक्ष, दूसरा फेज मैंने आपके सामने रखा था दवाइयों के बारे में। हमारे पास सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि बीमार आ गया उसको हम दवाई देते हैं। अब जो दवाई देते हैं तो दवाई देने के पीछे अगर हम बारीकी से खोज करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि दवाई के अंदर भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि हम दवाई कहते किसको हैं। अब बाजार में कोई चीज आप ले आए तो वो सब्सटेंस है, वेजिटेबल समझ लो। मैंने ग्रुप बताए थे आप सब लोगों को कि भाई अभी हम लोगों ने जो कुदरत ने दिया हुआ हमारा भंडार है ना दवाइयों का, जिसे हम दवाइयां बनाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है चाहे किसी भी साइंस वाले जो दवाइयां बनाते हैं उनके ग्रुप हैं, जितने भी वनस्पति से दवाइयां बनाते हैं उन सबको हम बोलते हैं वेजिटेबल ग्रुप, और जितने भी मिनरल्स हैं इस ब्रह्मांड में उनसे हम दवाइयां बनाते हैं तो उनको हम मिनरल किंगडम बोलते हैं। इसी तरह ही शरीर के जो लिविंग सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिक्रीशन तो वो है जो बॉडी के अंदर से तंदुरुस्त हेल्दी तंदुरुस्त टिश्यू से निकलता है, एक्सक्रीशन वो है जो वेस्ट के तौर पे शरीर से निकाला जाता है, जैसे पेशाब वगैरह हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह अंदर के जैसे थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है और अलग अलग हार्मोन है, इस तरह के अलग अलग सिक्रीशन है जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, और जो लिविंग बींग से दवाइयां बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सारकोड्स, और जो बीमार चीजें हैं और उनका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन से जैसे स्प्यूटम है, ट्यूबरकुलोसिस की स्प्यूटम है और इस सब से भी अभी चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं नोजोल्स। इसी तरह बीमारियों, इसके अलावा भी एक मैंने ग्रुप आपको बताया था जो अभी ह्यूमन बीइंग की जानकारी में, जिसको हम बोलते थे इम्पाउंडेरा भी दिया, उसे भी हम दवाइयां बुलाते शक्ति, जैसे एक्सरे है, जैसे सन रेज है, जैसे मून रेज है, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें रेज हैं जिनका पता है हमें कि अगर हमारे शरीर में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हमारे शरीर में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। जैसे धूप में चले जाओ ना तो वो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाकर लगा जाओ, ऐसे नहीं जाओ जी, क्यों बोलते हैं इसीलिए कि उससे इफेक्ट होते हैं ना। तो इसी तरह ही जितने भी हमने इस तरह के चीजें निकाली उनको हम बोलते हैं इम्पाउंडेरा भी दिया। अब इस सारी कहानी के पीछे हम चीज क्या, अवेज तो अब दिखाई नहीं देते ना, दवाई तो दिखाई देती है ना कि ये मैंने कुनीन से बना ली है, ये मैंने पेंसिलिन बना ली है, ये मैंने टेट्रासाइक्लिन बना लिया, ये तो मटेरियल आप देख रहे हैं ना। इसी तरह ओपियम की बात है, मैंने ओपियम की एग्जांपल ज्यादा रखी थी क्योंकि सभी लोग आसानी से समझते हैं, कोस सभी लोग समझते हैं, अफीम सभी लोग समझते हैं, तो मैं आसानी वाली वो एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि भाई पहली तो बात ये है कि कोई सब्सटेंस आपने बाजार से ले लिया, वो एक वेजिटेबल है या वो एक मिनरल है या कुछ भी है। अब जब उसे हम दवाई बनाते हैं तो फिर हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं ये मेडिसिनल सब्सटेंस है, इससे दवाई बनती है, और उसके बाद फिर जो दवाई बन जाती है तो सवाल पैदा होता है कि दवाई कहते किसको है। हम दवाई उसको बोलते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है या हमारी बॉडी के नॉर्मल चलन को कोई सब्सटेंस कैसे तब्दील करता है, कैसे इफेक्ट करता है, जैसे वो लेक्चर करने वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसी तरह ही इसका मतलब ये हुआ, मैं वही लाना चाहता हूं आपको, कि किसी भी सब्सटेंस का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम उस दवाई का इफेक्ट समझते हैं। और जब हम इसकी बारीकी से खोज करते हैं तो हम, वैसे साइंसों की बात तो मैंने लंबी हो गई कि भाई ये अगर नेचुरल फार्म में इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, और ये नेचुरल फार्म वही पोस्ट वही अफीम है, उससे पैसे दिन मार्फिन निकाल दिया तो हम बोलते हैं ये एलोपैथिक हो गया। अगर इससे भी ऊपर अब जाएंगे तो एक्चुअली क्या है, हर एक सब्सटेंस में जो चीज हमारे शरीर को इफेक्ट करती है ना, किसी भी दवाई की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको हम उसका बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। अफीम या पोस्ट के अंदर क्या है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो मटीरियल पोस्ट की बात नहीं कर रहे हम, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर होगी ना जिस जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी, फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे है। बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाइए कबल हो गई है, अफीम खाइए एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है, फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर आयुर्वेदिक और ये नेचुरल फार्म

वो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी। फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाइए कबल हो गई है, अफीम खाइए एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है। फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी ना कहें हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट करना है ये कहना चाहिए, ये ज्यादा दुरुस्त लफ्ज होगा। और उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ना वो हर सब्सटेंस का अपना अपना वक्रा है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी से मैच नहीं करता, अलग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप सबके सामने पहले प्रोग्रामों में रखी थी कि जैसे सुहागा है बोरेक्स ग्राम, जैसे चीनी है मीठी है, साल्ट लून है, सोडियम क्लोराइड ये भी चीज व्हाइट है, सभी चीजें तो व्हाइट है, फटकरी है वो व्हाइट है। और लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे ना, लो चून का मिश्रण लगा के करो जी, कैसे करोगे है जी। तो इसी तरह ही ये सब चीजें आ गई पूरी पीस कर रखी हुई हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे। बहुत सारे सब्सटेंसों के लिए फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाई देंगे, यार इसको क्या करें। सो अल्टीमेट जो साइंस है ना, मेडिकल कली साइंस ने ये इसका डिस्कर्स निकाला, ये नतीजा निकाला कि एक और तरीका कार है जिसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं वाइटलिटी पे जाना चाहता हूँ, याद ये रखना कि हमारा असल पॉइंट वो है कि वाइटलिटी पर पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सभी फिजिकल भौतिक सभी केमिकल रासायनिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए उसके बाद ये कुछ सब्सटेंस ऐसे लगे कि यार इनकी रिएक्शन भी वैसे ही है, इसका दिखने का ये इधर उधर का ये सब एक ही तरह है। तो फिर उसके बाद एक वे आउट निकाला गया कि हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज किसी की अगर फटकरी नमक से अलग है, अगर फटकरी सुहागे से अलग है तो क्यों अलग है। तो उसको जो भी सब्सटेंस हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हर आदमी पे इंडिविजुअल होगा। जो पहली बात मैंने पॉट्स की आपके सामने की थी कि हरेक पॉट में अलग अलग रंग है, ये साबित करने के लिए कि हर बंदा इंडिविजुअल है और उसमें एक ही तरह का रंग हमने मिलाना शुरू किया, बोरक्स दिया, फटकरी दी, साल्ट दिया, तो हर चीज जो है हमारे शरीर को इंडिविजुअल तौर पे अलग तौर पे इफेक्ट करेगी। फटकरी की तरह लून नहीं करेगा, नमक की तरह बोरक्स नहीं करेगा, ये चीजें अलग अलग तौर पे हमारे शरीर पे असर करेगी। और असर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल शरीर पे, असर ये है कि आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ जाएगी, आपकी डिजायर एवर्शन में तब्दीली आ जाएगी। तो ये क्या था जिसको हमने कहा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एंड दोज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल। किसी भी चीज की वो जो माइन्यूट पावर है, जैसे मैं हिप्नोटाइज की बात कर रहा था, वो जो माइन्यूट पावर है जो हमारे उस वाइटलिटी पे जो इनविजिबल पावर है उस पे इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ही दवाइयां का मटीरियल योग जो है उसका लेवल जो है हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है, उसके जो इफेक्ट बाद में पैदा होने वाले हैं वो हमारी वाइटलिटी से पैदा होते हैं कि ड्राइनेस हो गई है जी, अभी खाई थी ड्राइनेस होगी, अब तो कब्ज होगी। इस तरह के जितने भी सिम्टम हमारे पैदा होते हैं फिजिकल लेवल पे जो अफीम ने चेंज कर दिया सभी लोग जानते हैं। फिजिकल लेवल पे आपने कोई नशा खा लिया जो शरीर में पैदा होता है वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैदा होने वाले इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपकी चीज का इफेक्ट ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डीकोड करके हायर लेवल तक वाइटलिटी तक पहुंचाया, अब वाइटलिटी क्या फील कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम वो जानना चाहें, अगर वो हम समझ जाएं कि हरेक दवाई का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, तो फिर अगर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की परिभाषा

0: इंग
1: सिम्टम्स और इट इफेक्ट्स अवर बॉडी, हमारे शरीर को वो कैसे असर करती है अगर वो हम जान लेंगे, वो जानेंगे तो तभी ना लिविंग बींग जीवन है बंदा, उस जीवित बंदे को देंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स बजाय गिनी पिग पे, बजाय लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करने के बजाय अगर हम लोग यही लिविंग बींग लिविंग ह्यूमन करेंगे तो फिर हमें उनके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पता लग जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिविजुअल होंगे, और जो जिनका जो करेक्टर है वो उसका इंडिविजुअल करेक्टर होगा कि ये रंग हमने पॉट में मिक्स किया तो असल इसका करेक्टरिस्टिक क्या था और असल इसने हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट किया अलग अलग लोगों में अलग। मैं सवाल और आसान कर दूं, कुनीन आप सभी लोगों को दे दें, कुनीन आप सभी समझते हो ना, कुनीन आप तीन चार आदमी को अलग अलग दे दो, अगर फील करोगे कि जो उसके फिजिकल सिम्टम है वो तो सभी में एक तरह के आएंगे लेकिन उसके जो हायर लेवल के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट है फीलिंग डिजायर अवर्शन कुनीन खाने के बाद वो सबका वक्रा अलग अलग होगा। तो अगर हम हर बीमारी में हर एक दवाई को इस्तेमाल करते हुए उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को साथ में ले लें या ये समझ लें और एक्टिव भूल जाए बीमारी को, भूल जाए शरीर को कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, ओ कैंसर हो गया, इतना बड़ा कोड़ा हो गया, ये कैसे करेगा, कैसे ठीक होगा, या बहुत बड़ी चीजें जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी में वो हम देख लेते वो कैसे ठीक होगी तो हमारे लिए परेशानी हो जाती, फिर हम सर्जरी की तरफ दौड़ते हैं या काटो इस गुफा को। पर जिस चीज ने वो चीज पैदा की है, जो डाइवर्टेड है, जो चीज है फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में आ गई है और उसको हम काट कर फेंकेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बीमारी को रूट आउट कर दिया, क्योंकि वो हायर लेवल से शुरू हुई थी। उस हायर लेवल को अगर आप समझ के चीज करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है और वो हुई है, क्योंकि हर बंदा एक्सपेरिमेंटर है, हर बंदा नए नए तौर पे अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट हुए वो पढ़ते हैं, उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। तो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है, ट्यूमर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को इरेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना। तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को जो वाइटलिटी को सेट नहीं बैठी वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की कोशिश करती है और आपको सिम्टम के जरिए बताना चाहती है कि ये चीज है। अब इस उल्टी को तो वो उससे नहीं ना मिलाएंगे, अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया तो आप नहीं खाना, ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए या कुछ ऐसा हो गया जिसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिकेशन बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी, अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो हैं कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाए तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक हो सकते हैं। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पलें दी हैं, यहाँ लोकल अमेरिका की एग्जाम्पलें दी हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मैलिग्नेंट हो गए, जिनके एक एक दो दो बार सर्जरी भी हो गई, वो लोग भी ठीक हुए हैं। वो लोग भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक हुए हैं? कि हमने उसके एशेंस की मैच की। क्या दे रहे हैं हम? हमने उसकी वाइटलिटी के जो सिम्टम्स थे, ये तो एक्सरे ने बता दिया कि भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, पैथोलॉजी है, चेंज है, सब कुछ हो गया है। अब डॉक्टर लोग जो सर्जरी करने वाले भी, मैंने आपको बताया था कि सर्जरी भी हो चुकी, दो बार भी सर्जरी हो चुकी, फिर दोबारा इरप्ट हो गया। तो क्या हो गया? मतलब हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि बिल्ली तो आ रही है, कबूतर बोलता हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये दिखाई ना दे हमें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इंडिविजुअल कैरेक्टर, कि वो वाइटलिटी जो इसके अंदर जिंदा है, जिसने ये ट्यूमर पैदा कर दिया है, जिसको हम आज मैलिग्नेंट कह रहे हैं, एकदम तो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है ना, और वो एक भाषा में आपको बता रही है, अगर आप वो भाषा समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फीलिंग डिजायर अवर्शन अगर आप समझ रहे हैं, और फिर उसको उस दवाई के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना जिससे हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं। अब जब हैनीमैन ने ये काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ 24 मेडिकेशंस का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के ऊपर प्रूव किया था। अब तो हमारे पास 3000 से भी ऊपर मेडिसिन है और उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम जानते हैं, और अगर कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर ही मैच करके के क्या डिजायर है, कि वाइटलिटी क्या चाहती है, अगर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी तरह की उसको हेल्प दी जाएगी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हमें या तो दर्द तकलीफ या उम्र समझ नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि भाई अब इसको वाइटलिटी को ठीक करते करते किसी चीज को तो लगेंगे 6 महीने, अब जीवन इतना समय नहीं देता या तकलीफ इतना समय नहीं देती, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं, वो जल्दी वाला ठीक कर देते हैं। तो वो जल्दी वाला टीका करते हैं लेकिन फिर दोबारा इरप्शन होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वही चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल उसका निवारण नहीं किया होता, और जब तक हम असल निवारण नहीं करेंगे वही बीमारियां बार बार आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपका उसी तरह का उपचार होता रहेगा, और ये एक सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। समझने की जानने की जरूरत हमें ये है कि हमें दवाइयों के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानने हैं, और हमें वो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी उनकी भी वही परिभाषा है जो हमारी वाइटलिटी की परिभाषा है। उसको दवाई को देने के बाद शारीरिक सिम्टम भी आप देखते हैं, मेंटल सिम्टम भी आप देखते हैं। मेंटल कहाँ से है? उस वाइटलिटी से है। क्या फील करते हैं आप? तो इस मैंने आपको समा थोड़ा रह गया, मैं आपको याद करा दूं कि मैं हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने सिम्टम आपके ले लिए। ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने आपके सिम्टम्स ले लिए, सिर्फ मेंटल सिम्टम, कि आपकी मेंटल सिक्योरिटी क्या बोलती, वाइटलिटी आपकी क्या, फिजिकल सिम्टम बीमारी आपको कुछ भी थी, आप पेट दर्द कह रहे थे, आप रसौली कह रहे थे, आपको उसको एक तरफ रख दीजिए। मैंने आपके मेंटल सिम्टम का आपकी वो बोली जो आपकी वाइटलिटी बोल रही है, मेरा जी कच्चा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। सो मेरा मन नहीं करता, नींद नहीं आती, मेरे भूख नहीं लगती, मेरा बात करने को मन नहीं करता, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद उसी आदमी का एक बाल मैंने दिया। ये एक बार नहीं किया मैंने, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। एक बाल लिया, रूट आउट किया रूट से, और वही दवाई जो मैं समझता था कि इसकी वाइटलिटी के मुताबिक है, उसको हमने अपनी तली के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर, और वही जो बाल था उसके साथ चुहाया। वो पेशेंट जो था मेरे टेबल के, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, और अल्टीमेट आफ्टर सम टाइम्स उसी ने वही सिम्टम मुझे बताने शुरू कर दिए जो सिम्टम उस मेडिकेशन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के थे। कोई वाइब्रेशन इस तरह भी होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, तब तक इस पर विश्वास नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, तब तक आपको हिप्नोटाइज पर भी विश्वास नहीं होगा जब तक आप खुद इस चीज को नहीं करते, तब तक आपको ये जो होम्योपैथिक सिद्धांत है या इसकी दवाइयां जो वाइटलिटी के तौर पे पावर के तौर पे हम देते हैं, पावर का मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मींस जो आपकी वाइटलिटी के तौर पे, क्योंकि नमक हवा में नहीं घोला जा सकता ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन घुला जब ये अमोनिया गंध उसमें आनी शुरू हुई तो साबित ये होगा कि ये घुल गया उसमें। जब आप वो समझना शुरू करेंगे हर बीमारी में, हर इंडिविजुअल बंदे में उसकी जो डिजायर वर्शन फीलिंग्स दिखना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रेकर्ड है ना भाई, अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रेकर्ड आ गया कि हम हर चीज को उसका क्या इफेक्ट हमारी वाइटिलिटी पे हुआ लोड, इवन एलोपैथिक स्टाइल में भी बेशक उसको रिकोनाइज करें या ना करें, लेकिन हर दवाई चाहे पेंसिलिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, क्लोरोफेनिकल कुछ भी दो, लेकिन उसके बाद शारीरिक इफेक्ट के बाद अगर हायर लेवल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वाइटलिटी इस दवाई को खाने के बाद क्या कह रही है, और यही उसके फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वाइटलिटी के ऊपर वही उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं। यानी मैंने तो क्विनीन के साथ शुरू किया था ना कि क्विनीन देनी शुरू की और उसके बाद देखा कि इसके पास कैसे सिम्टम पैदा होते हैं, मलेरिया वाले सिम्टम तो पैदा हो गए, वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्विनीन, इसका मतलब क्विनीन मलेरिया भी पैदा कर सकती है, जो आदमी किसी को कुर्सी पे बिठा सकता है वो उसको कुर्सी से उठा भी सकता है, दोनों की बराबर बराबर है, ये तो वो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उसके बाद ऐसा था कि इस बंदे में इंडिविजुअल फीलिंग क्या पैदा हुई, जहां से उसने कहा कि नहीं सभी मलेरिया के केसेस के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, फिजिकल लेवल पे तो ठीक है लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या इसका क्विनीन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो उससे पे मैच नहीं करता। तो इस तरह हम मेडिकल साइंस के इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर अपना लें, अगर सिर्फ यही देखना शुरू करें हर बीमारी में, ये ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत देर वाला काम है, ये कौन करेगा, क्योंकि अगर आपको क्योर की परिभाषा का पता हो ना तो फिर आप ये समझेंगे कि टेम्परेरी सप्रेस करना, टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करना आपकी डिमांड हो सकती है, अगर कोई चीज अनबियरेबल है तो उसको टेम्परेरी तौर पे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इरेडिकेट करना चाहते हो परमानेंटली तो फिर आपको हल वहीं से करना होगा, वहीं से ये ठीक होगा टेम्परेरी सफाइस करने। हाँ ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेन बर्दाश्त नहीं करते और उस पेन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग ने क्या किया है, अब जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या जो टेम्परेरी वक्ती तौर पे ज्यादा तकलीफ दे तकलीफ है उसको मैनेज करते हैं, उसको हमने बोल दिया एलोपैथिक। सबस्टांस वही हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उन्हीं से उनको दवाई बनानी है, उन्हीं से हरेक सिस्टम वाले को दवाई बनानी है, लेकिन हमने उसकी डिवीजन बना दी कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को किस रूप में, जो एक ड्रग सब्सटेंस की जो पावर है, हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, वो जो पावर है उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं या उससे माइन्यूट रूप में इस्तेमाल करते हैं, अफीम खा ली या पोस्ट खा लिया तो हम बोलते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है, और मैं मॉर्फिन पैथेडिन निकाल दी तो फिर हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो एलोपैथिक दवाई है, और अगर मॉर्फिन पैथेडिन से हम उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से भी ऊपर जाते हैं तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हरेक दवाई जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके इस तरह के इफेक्ट्स महसूस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं कि ये ऐसी करते हैं, और अगर उन्हीं रिकॉर्डेड के बेस पर भी हम किसी का ट्रीटमेंट करना शुरू करें और उसी रिकॉर्डेड बेस पर ही हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस करनी शुरू करें, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की डायग्नोसिस करने, वो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, वो इंडिविजुअल का डायग्नोसिस होगा, अगर बीमारी को छोड़कर बीमारी का नामकरण तो हम कुछ एक सिम्टम से लेते हैं ना, वी टेक फ्यू सिम्टम्स इनटू कंसीडरेशन टू डायग्नोस द डिजीज, बाकी शरीर को हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम वाइटलिटी के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेकर उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने का हमारा तरीकाकार होगा। तो आज का समा मेरा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568 फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किस बीमारी से जूझ रहे हो, ट्रीटमेंट करवाते थक गए हो तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कोई फीस नहीं है कंसल्टेशन की। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो 408-687-1899। और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ये करवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। जाते जाते ये गुजारिश फिर आपसे करता हूं कि भाई अगर इन प्रोग्रामों में आपको कोई लगे कि भाई जानकारी की बात है, अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है तो ये बात और लोगों तक भी पहुंचाएं। वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, वो यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सबरंग रेडियो स्टेशन में आ सकते हैं, वो रेडियो प्रभाग में आ सकते हैं, कहीं भी आप रोजाना इन प्रोग्रामों को 5 to 6 PM कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप सुन सकते हैं। और हम लोग जीवन की ये चलती हुई यात्रा अब यहां तक ले चले हैं कि अब इस शरीर की बंतर के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हेड से शुरू करेंगे हम लोग, सिर क्या है, बंतर इसकी कैसे बनी, इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है, और उसके बाद अगर ये बीमार पड़ता है तो कैसे पड़ता है, हम फिजिकल की बात करेंगे। वो जो इंडिविजुअल बात जो मैंने आज की है ना वो उससे हाई लेवल की बात है, ये ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो चलन चल रहा है फिजिकल, तो वो बात मैंने बहुत बार कर दी आप सबके सामने कि हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी साइंस थी ना पीछे वो उस इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंचने की वो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दी हमने। जो नर्वस देख कर ही बता देते थे कि तेरे तो फिरनी में नुक्स है, तेरे तो फलानी जगह नुक्स है, अब वो छोड़ आए हैं। लेकिन जो भी अभी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस शरीर के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस अंग में कोई बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, इसकी फंक्शन की है, फंक्शन कैसे चलती है, उसमें रिकावट कैसे आती है। सो ये सब प्रोग्राम अब आगे से चलने शुरू होंगे। कल से ये प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम होगा वो अंग्रेजी में होगा, दूसरा फिर पंजाबी में होगा और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम हिंदी में, क्योंकि हरेक भाषा समझने वाला इन चीजों को समझ सके, हरेक आदमी ये समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे और वो भी इन प्रोग्रामों को सुने और फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाए। रब रखा आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, सत श्री अकाल।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया गल्ला जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी,
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू चीमन साहब
0: जी, डॉक्टर साहब थैंक यू,
1: थैंक यू जी, मेहरबानी।
2: थैंक यू दोस्तों, ताडा भी श्रोते हो जेडे प्यार ना सुन दे हो, बड़ी मेहरबानी। फिर अगले प्रोग्राम तक मिलते हैं जी, सत श्री अकाल।

दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो ताड़े नाल रूबरू हो रहे हैं जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तुहानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असीं प्रोग्राम करदे हां जिहदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दिया दुनिया दिया खबरां लैके ताडे नाल रूबरू हुन्ने आ ते उस तो बाद डाक्टर गुरदीप सिंह संधू सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओ दिंदे आ जिहदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे आ क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे आ जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करते इंगलिश च भी करते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करते हैं सो टाइम मिले ते वो प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दी वीडियो ते फेसबुक भी देते फेसबुक ते लाइव भी होंदे सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दियां कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चोण में कोशिश करी दे कि वधिया गीत कल्चर गीत जिहदे विच वैगलर ना हो जिहदे विच इहो जिहा शब्द वाली ना हो असी कोशिश करी दी है तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी कृपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी उन्हां दा पहला पता नहीं गीत कहोगे शब्द कहोगे कुछ भी समझ लियो जी ओही तुहाडे नाल रूबरू करदे हां

सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। दोस्तों तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी और न्यूयॉर्क तो स्टूडियो तो मैं थोड़े नाल रूबरू हो रहा जी हाजिर हो रहा थोड़ी सेवा दे विच। ते अज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करांगे जी शब्द नाल भाई निर्मल सिंह जी खालसा। कुछ उस तो बाद गीत सुनांगे ते फिर साडे नाल लाल सिंह चीमा साहब जुड़नगे जी खबरां लैके जो कोई अजमक दे मसले है दुनिया दे उपर जो कुछ हो रहा है इस वक्त वड्डियां जंगां लगियां होई है पता नहीं किधर किधर खिलरनियां हजे सो उहदे बारे आपां गलबात करांगे। ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु दो घंटे का प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा दे विच हाजर हां जी। लो शब्द नाल शुरुआत करते हैं जी। लो जी

मित्रों प्यारे सत श्री अकाल नमस्ते सलाम अलैकुम सारे वीर भैन भरा बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो प्रोग्राम की शुरुआत साडे नाल मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह हक प्रवास रेडियो न्यूयॉर्क स्टूडियो तो तुसी प्रोग्राम नूं सुन रहे हो प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जी अपने कोल एग्जैक्टली टाइम पूरे 7 बज गए ईस्टर्न टाइम न्यूयॉर्क तो ते इंडिया दे विच एग्जैक्टली जेड़े आ मेरे हिसाब नाल 4:30 मॉर्निंग हो गए। कुछ गीतां दी लड़ी डिफरेंट सिंगरां दे डिफरेंट गीत वो पेश करदे आ। पहला सब तो कन्वर गरेवाल साहब ते फिर एक ड्यूल गीत हैगा फिर हंसराज जी ते इंद्रजीत निकू ते कमल हीर ये 4-5 गीत आपां सुनदे आ। अद्धा घंटा अपने को है ते उस तो बाद जी खबर वो तुहाडे नाल कर लांगे। दोस्तों जे तुसी कोई मैसेज करना हो ते अपना नंबर है जी 7328743259 इत्थे वट्सएप मैसेज कर सकते हो रेगुलर कर सकते हो। बड़ा धन्नवाद सारिआं दा शुक्रिया मेहरबानी। लो जी गीतां चलदे आ कनवर गरेवाल हुण दा गीत सुनदे आ जी पहला।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोतियों,

பிள்ளை அடநாச்சிதா குருநானக்கு வாகனையா காத்து ரப்ப நாள் விளடனா சாயிதா ज्योति भाई बोले जिन्हों बारे तुम बहुत ही डिटेल विच दस्या ते उन्हां दी दास्तान बहुत ही ज्यादा अज दे समाज नूं सेध देण वाली आ। उन्हां टाइमां दे विच देखो पहली भारत दी एक टीचर हुई किन्ना संघर्ष करके इसे तक पहुंची। तो उस क्रांतिकारी सुचरी भाई फूले बारे मैं चार लाइना तुहानू तरानम जा रहा जो कि साडे सोहन लाल सहजल साहब जी दियां लिखियां ने।

सभी पर खुले करासी ज्योति सभी तेरी भाई भूले फिर रुतवा महान है ओदा साडे देश दी ओ पहली मेला टीचर ते वड्डा योगदान है ओदा साडे देश पहली मेला टीचर ते वड्डा योगदान है ओदा पति ज्योति वा फूले दे नाल रख के माड़े समयां च कंडियां फेके पति ज्योति वा फूले दे नाल रख के माड़े

लोड़ बंद जे खाली दरजो मुकावे कब की है वो माया जो ऐवे रुर जावे दौलत कम की खूंजे खन्ना में रहना कुछ जीना समय समय दी खन्ना में रहना कुछ जीना

क्या बात है जी, वंडरफुल। सब परवे सच दे खते पै गए, कोके ला के खूंडे नू। आ सब परवे सच दे खते पै गए, कोके ला के खूंडे नू। झूठ नू अड्डियां चुक चुक सुन दे, पत्थर मारन गूंगे नू। झूठ नू अड्डियां चुक चुक सुन दे, पत्थर मारन गूंगे नू। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, तुसी सुन रहे हो जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट, ते ए सी साडा अज दा प्रोग्राम। अगले हफ्ते सैटरडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगा, ते मे भी हफ्ते दे किसे दिन होर भी तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगा, पर ओ मैं डिसाइड नहीं अजे कीता। ते ए सी जी साडा अज दा प्रोग्राम, ते देशां विदेशां च सुन रहे सारे सोहणे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट। ए सारा ही प्लैनेट साडा है, हांजी। ते गल इदां वै भाई, प्लैनेट ते सारे दा सारा साडा है, असी भी एक दूजे दे हां। दुनिया ही साडी है, सारी दी सारी है जिहड़ी इस प्लैनेट दी दुनिया ना, बाकियां ते है या नहीं है ए अजे कोई गरंटी वाली गल नहीं, पर असी जिस प्लैनेट दे उत्ते साडे पैर ने ओहदियां सत्ते खैरां मंगणियां ने, ते उहनां पैरां वालियां दीआं वी सत्ते खैरां मंगणियां ने। सारे संसार दी सुख शांति लई दुआ ही नहीं करनी, यतन करने ने। आप सब नू एक बारी फिर मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अंटिल नेक्स्ट टाइम।